0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
15: जी लिस्टनर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
16: वालेकुम साहब।
15: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
16: जी वो कल जैसे 9 नवंबर है और इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी को जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम है उसको नौजवानों तक, इकबाल की सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो बहुत अरसे बाद कलाम इकबाल को दोबारा जो है एक नए के साथ जो है पेश किया गया है और एक नए अपोजिशन के साथ पेश किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह ये काफी जारी रहेगा।
15: हम सिर से उनका पैगाम लेंगे कल हजरत अल्लामा इकबाल का जो में पैदाइश है उस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
16: मैं समझता हूँ कि जी कल के दिन की अहमियत जो है वो इस जाहिर होती है कि कल उस शख्सियत का यौम पैदाइश है जिनके तस्वुर की बुनियाद पर ये मुल्क हमारे वजूद में आया, और ऐसी शख्सियत जो पूरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए एक आइडियल की हैसियत रखती है, और ऐसी शख्सियत जिनके कलाम ने जो है पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है एक एतमाद और एक अपनी पहचान, एक खुदी और एक एतमाद पैदा किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि कल का दिन अहम है, और कल हमारी सोच और फिक्र जो है वो
5: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaiyan dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
8: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 495555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
14: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is... Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
7: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se dil Eid Mubarak.
6: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
10: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
11: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
10: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
11: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
10: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
11: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
12: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
11: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और
3: वो भी फ्री मैगजीन। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.
12: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, BD94 QU 01274 056 014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
17: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Dora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaein dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: كنتم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة
1: You're listening to Bradford Asian Radio.
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
2: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
3: Listen on your PC or laptop The best Asian music online
4: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: अदीब राय पुरी साहब की कई हुई नात के अशआर आपके सामने पेश कर रहा हूँ और जो शेर पसंद आया आपको बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह माशाल्लाह जरूर कहिएगा, इससे मुझे भी पढ़ने में मजा आएगा और आपको सुनने में मजा आएगा।

الحق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
8: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मैचिंग।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaiyan dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी।
3: दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM एंड ऑनलाइन।
4: कौन सा मैं नाम ढूंढूं उस सितमगर के लिए, कौन सा मैं नाम ढूंढूं उस सितमगर के लिए, जिसने रिश्ते तोड़ डाले जिंदगी भर के लिए।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.
9: कल जो अपने थे वो बेगाने नजर आते हैं, कल जो अपने थे वो बेगाने नजर आते हैं, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: संग संग तुम भी गुनगुना।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Turab Haider Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
9: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
11: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड

0: और आगे बढ़ जाएगा। या घर में क्या चल रहा है, किसी के क्या हालात हैं, वाकयात हैं, इंसान को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी ही धुन में, अपनी ही लगन में लगा हुआ, पैसा कमाने या काम काज करने या फिर नौकरी करने या कारोबार करने या फिर जो उसका कोई शौक़ है ऐसा, उसके पीछे वो अपनी ज़िंदगी लगा के उसने, तो वो बाकी सब से कता ताल्लुक़ किया हुआ है। ये ज़िंदगी नहीं होती है। ज़िंदगी ये होती है कि आप अपने साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, खसूसन आपका ख़ानदान, आपकी फैमिली, पहले तो वो आती है ना सबसे, तो उनके साथ जुड़ के रहें, मिलजुल के रहें, अच्छे तरीके से रहें, कोशिश ज़रूर करें अपने फ़राइज़ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, फिर साथ ही साथ थोड़े और आगे चले जाएं, बढ़ जाएं, दायरा थोड़ा वसी करें, तो फिर क्या है, आपके आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। फिर आगे चलें जहाँ पर आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, दुकान है आपकी, कुछ और है, वहाँ पर आप जब सफ़र करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं, यानी आपके कोलीग्स, फिर आपके फ्रेंड्स हैं उसमें, उसमें आपके दीगर अजीज़ रिश्तेदार आ जाते हैं, दोस्त अहबाब भी आ गए। तो इन सबको साथ लेके चलना, इन सबका ख्याल रखना अपने साथ साथ, ये नहीं है कि आप अपना ख्याल करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये जो बैलेंस है ना समीने कराम, सोचिएगा, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, टू बी बैलेंस्ड। चाहे वो खाने में पीने में बैलेंस हो, चाहे वो आपके रवैये जो हैं, आपकी जज्बात और एहसासात हैं उनमें बैलेंस हो, चाहे वो आपके मामलाते ज़िंदगी हैं उनमें बैलेंस हो, चाहे वो हत्ता के इबादत ही है, आप अपने गॉड, अपने भगवान, अपने अल्लाह ईश्वर की जो आप इबादत करते हैं, जो आप, तो उसमें अगर आप बहुत बढ़ जाएंगे, ये भी पसंदीदा नहीं है। तो हर चीज़ में बैलेंस रखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये सोच लीजिएगा इस बारे में आज आप थोड़ा सा। तो हर चीज़ को साथ लेके चलने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बाकी ये है, हर शख्स की अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है, हर शख्स के अपने सिचुएशंस, कंडीशंस, हालात, वाकयात मुख्तलिफ होते हैं, उसकी अपनी एक इनफरादी शख्सियत बड़ी मुख्तलिफ होती है, वो जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है ना, हर शख्स अपनी जगह पर एक यूनिक पर्सनल है। तो यूनिक पर्सनालिटीज जो होती हैं वो फिर अपने हिसाब से चलती हैं चीज़ों को लेके। कोशिश ये कीजिए कि आपका रास्ता सही मानों में मुतय्यन हो, आपने गोल, आपका एम, आपका गोल क्या है उसको सामने रख के फिर आप सही रास्ते का इंतखाब कीजिए कि आपने उस गोल तक पहुंचना कैसे है। ये छोटी मोटी आगे पीछे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, उनको छोड़िए, उनको जाने दीजिए, क्योंकि हर मुश्किल और हर परेशानी का हल इंसान के खुद के पास नहीं होता। इंसान मुख्तारे कुल नहीं है, बहुत हद तक उसका इरादा इख्तियार चलता है, उसकी मर्जी भी चलती है, लेकिन हर जगह पे उसका इरादा इख्तियार नहीं चल सकता। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को, यानी अपने इरादे इख्तियार को देख के, अपनी सलाहियत और काबिलियत को देख के, और फिर अपने जो मालिक खालिक परवरदिगार आपका है उसके तय करदा रास्ते पर चलेंगे, उसको याद करते हुए, उससे मदद तलब करते हुए, तो यकीनन फिर आपका रास्ता आसान हो जाएगा और आप अपने गोल तक इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए अब एक और खूबसूरत सा हम गीत सुनते हैं। तो फैल साहब, बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लीजिए ये खूबसूरत सा गीत जो है, ये तो फैल साहब हम आपके नाम करते हैं, सुनिएगा।
1: अब तेरे दिल में हम
0: माज़ूर चाहेंगे, अगर गीत लगा दिया है, वक्त की तरफ देखा तो वक्त जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा। वक्त कह रहा है, क्या कहता है वक्त? वक्त कहता है कि जी अभी तो ब्रेक का वक्त आ जाएगा, एक डेढ़ मिनट है, तो गीत लगाएंगे तो वो तो काटना पड़ जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है कि कटा भटा गीत जो है। तो फैल साहब आपके नाम हम करें, हम पूरा इस गीत को सुनवाएंगे आपको। तो क्या करें, इस एक मिनट में हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, एक बहुत खूबसूरत सी मुजफ्फर वारसी की लिखी हुई गज़ल है, वो आपके नाम करते हैं, और उसमें एक सबक भी है। वो कहते हैं कि हम क्यों ये कहें कोई हमारा नहीं होता, हम क्यों ये कहें कोई हमारा नहीं होता, मौजों के लिए कोई किनारा नहीं होता। दिल टूट भी जाए तो मोहब्बत नहीं मिटती, दिल टूट भी जाए तो मोहब्बत नहीं मिटती, इस राह में लुट कर भी खसारा नहीं होता। माज़े चाहेंगे समीने कराम, गला थोड़ा सा आज कुछ ख़राब है। बहरहाल, सरमाया शब होते हैं यूं तो सभी तारे, सरमाया शब होते हैं यूं तो सभी तारे, हर तारा मगर सुबह का तारा नहीं होता। अशकों से कहीं मिटता है एहसास तलवन, पानी में जो घुल जाए वो पारा नहीं होता। सोने की तराजू में मेरा दर्द न तोलो, सोने की तराजू में मेरा दर्द न तोलो, इमदाद से गैरत का गुजारा नहीं होता। बहुत खूबसूरत ये शेर है कि सोने की तराजू में मेरा दर्द न तोलो, इमदाद से गैरत का गुजारा नहीं होता। तुम भी तो मुजफ्फर की किसी बात पे बोलो, तुम भी तो मुजफ्फर की किसी बात पे बोलो, शायर का ही लफ्ज़ों पे अजारा नहीं होता। हम क्यों ये कहें कोई हमारा नहीं होता, मौजों के लिए कोई किनारा नहीं होता। लीजिए अब चलते हैं ब्रेक की जाने।
2: Asian Radio 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR 01274488877।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी। बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95BR 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
0: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
0: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
6: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
5: UK.
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

जी समीन कलाम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो पर जो बच रहा है 1413 AM पे डैब के ज़रिए ऑनलाइन और अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी आप हमारी नशियात से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं। समीरा साहब आप बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी नवाजिश हमेशा की तरह प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, न सिर्फ सुनती हैं बल्कि शामिल भी होती हैं, शमूलियत इख्तियार करती हैं। और हमने के जैसा हमेशा कहते हैं जब हमारे ऐसे मौज़े सामीने कराम शामिल भी होते हैं तो प्रोग्राम को हकीकतन चार चांद लग जाते हैं। तो आप आए बाहर आई वाली बात है समीरा साहिबा, खुश रहिए, शादो आबाद रहिए। आपके वैसे कहने से पहले जब हम आगे गीत क्यों करते हैं ना, ज़ाहिर है दो चार गीत हमें क्यों करने पड़ते हैं पहले से ही लाइन में ताकि फौरन जो है गीत लगा दिया जाए, तो यकीन कीजिए आपका ख्याल जहन में आता है और मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई ना कोई गीत हम पहले से ही क्यों कर लेते हैं या कर रखते हैं। तो आज भी हमने एक गीत उनका क्यों कर लिया था इससे पहले कि आप ने फ़ोन किया, आप शामिल हुई प्रोग्राम में, लेकिन अब जाहिर है जिस गीत की आपने फरमाइश की है ना वो गीत हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं समीरा साहिबा। जाहिर है अपने इस पसंदीदा गीत को आप सुनेंगी, इन्जॉय करेंगी, ज़रूर सुनिएगा, इन्जॉय कीजिएगा। तो उससे पहले क्या इन्जॉय आप इन्जॉय कर सकती हैं, हम आपके लिए क्या पेश कर सकते हैं, तो उससे पहले अमजद इस्लाम अमजद की एक छोटी सी नज़्म है वो हम आपके गोश गुजार करते हैं समीरा साहिबा, आपके नाम करते हैं, उसका उनवान है अभी तो। जी हाँ, अभी तो रुत बदलनी थी, अभी तो फूल खिलने थे, अभी तो रुत बदलनी थी, अभी तो फूल खिलने थे, अभी तो रात ढलनी थी, अभी तो ज़ख्म सिलने थे, अभी तो सरजमीने जहाँ पे एक बादल को घिरना था, अभी तो वसल की बारिश में नंगे पांव फिरना था, अभी तो किश्ते गम में एक खुशी का ख्वाब बोना था, अभी तो किश्ते गम में एक खुशी का ख्वाब बोना था, अभी तो सैकड़ों सोची हुई बातों को होना था, अभी तो साहिलों पर एक हवाए शाद चलनी थी, अभी तो साहिलों पर एक हवाए शाद चलनी थी, अभी जो चल रही है ये तो कुछ दिन बाद चलनी थी, अभी तो रुत बदलनी थी, अभी तो फूल खिलने थे, अभी तो रात ढलनी थी, अभी तो ज़ख्म सिलने थे, अभी तो सरजमीने जहाँ पे एक बादल को घिरना था, अभी तो वसल की बारिश में नंगे पांव फिरना था, अभी तो किश्ते गम में एक खुशी का ख्वाब बोना था, अभी तो सैकड़ों सोची हुई बातों को होना था, अभी तो साहिलों पर एक हवाए शाद चलनी थी, अभी जो चल रही है ये तो कुछ दिन बात चलनी थी।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: ताज्जुब है

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: say.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: तरसती निगाहों की यही तड़प तो मोहब्बत को और निखारती है। कभी ख्वाबों में मिलते हैं, कभी तसव्वुर में बातें करते हैं।
4: प्रेमी हर हाल में सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं,
3: क्योंकि प्यार ही उनकी जिंदगी है, प्यार ही उनकी सांसों का सहारा है।
4: अल्फाज नफीस आलम के हैं और अंदाज मोहम्मद अजीज का।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
2: प्यार हुआ मुझे शर्माते हैं वो, नशे में हूँ मैं लड़खड़ाते हैं वो.
3: जनाब मोहम्मद अजीज की आवाज में समात फरमाइए जनाब नफीस आलम की गजल.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

जी सामिन कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना, उम्मीद करते हैं कि पसंद किया होगा। बहुत अच्छा लगा, पुराना गीत था और क्या खूबसूरत शायरी थी। शायरी से शाइस्ता मुफ्ती की एक खूबसूरत सी गज़ल हम आपके नाम आपके गोश गुजार करते हैं। और जरका साहिबा, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश इस गीत को भी पसंद करने के लिए। अभी तक आप प्रोग्राम में हमारे साथ साथ हैं, तहे दिल से जरका साहिबा आपके मशकूर व ममनून। और ये शाइस्ता मुफ्ती की लिखी हुई जो शायरी है ना, ये भी आपके नाम करते हैं। वो लिखती हैं, रेत पर नक्श जमाते हुए मर जाते हैं, जिंदगी तुझसे निभाते हुए मर जाते हैं। जिंदा रहना है किसे, किसको गुजर जाना है, लोग तकदीर मिलाते हुए मर जाते हैं। दीदाए शौक तेरी दीदावरी के सदके, लोग हंसते हैं हंसाते हुए मर जाते हैं। क्या खूबसूरत ये गीत है। दीदाए शौक तेरी दीदावरी के सदके, लोग हंसते हैं हंसाते हुए मर जाते हैं। किस कदर ख्वाब से बोझल है निगाहें उसकी, बज़्म में आंख मिलाते हुए मर जाते हैं। जानिए कौन कहाँ किससे तकाजा कर ले, जानिए कौन कहाँ किससे तकाजा कर ले, जान पर कर्ज उठाते हुए मर जाते हैं। जो बात अभी हो रही थी ना अशफाक अहमद साहब के जाविये में भी, कर्ज ही की बात हुई। खैर, वो रुपए पैसों के कर्ज की बात थी, यहाँ पे किस कर्ज की बात हो रही है। बहुत से कर्ज होते हैं सामीन कराम, किसी का एहसान होता है, किसी का रुपए पैसों का कर्ज है, किसी का जान का कर्ज है, किसी के माल का कर्ज है, किसी की इज्जत का कर्ज है, किसी के वादों का कर्ज होता है। तो बहुत से कर्ज होते हैं ज़िंदगी में। तो शाइस्ता मुफ्ती कहती हैं, जानिए कौन कहाँ किससे तकाजा कर ले, जान पर कर्ज उठाते हुए मर जाते हैं। फिर उसी सुबह की रंगी हसीन साथ में, हिजर की रात बुझाते हुए मर जाते हैं। हैं मेरे दोस्त मगर शिकवा कोई क्या कीजिए, हैं मेरे दोस्त मगर शिकवा कोई क्या कीजिए, ज़ख्म जो दिल पर लगाते हुए मर जाते हैं। जिनका दावा है मसीहाई शनासाई का, जिनका दावा है मसीहाई शनासाई का, रोने वालों को रुलाते हुए मर जाते हैं। हाय इस जीस्त का हंगाम की फुर्सत न मिली, और ये तो सभी का रोना है। हर किसी से पूछिए तो वो कहता है जी वक्त ही नहीं मिला, बहुत मसरूफियत है, माजरत। तो वो यही लिखती हैं, हाय इस जीस्त का हंगाम, यानी ज़िंदगी का ये जो हंगामा है, कि फुर्सत न मिली, बोझ एक दिल पे उठाए हुए मर जाते हैं। क्या खूबसूरत इन्होंने गज़ल लिखी शाइस्ता मुफ्ती साहिबा ने। जो आजकल के हालातों वाक़ियात हैं, एक लिहाज से देखा जाए तो ये उन्हीं की तस्वीर खींचती नज़र आती हैं। बहरहाल सामीन कराम, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त भी हम लें। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी बरोज़ सोमवार इसी तरह 10 से 1 के दौरान। तो उम्मीद करते हैं कि आज का इंतखाब आपको पसंद आया होगा, जिस तरह से भी था। और जितने हमारे सामीन कराम प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से मशकूर। हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारा और आपका अल्लाह हामियो नासिर, अल्लाह हाफिज़।

0: Beautiful Asian Radio on 1413 AM.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 13

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 40।
5: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
8: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se dil Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। हमारे तमाम सामेईन और नाज़रीन इसे ऑनलाइन सुन पा रहे हैं www.bradfordasianradio.co.uk पर। साथ ही साथ हमारे वह अहबाब जो हमें इस हसीन वादी में सुन रहे हैं 1413 मीडियम वेव पर, हमारे प्रोग्राम DAB रेडियो पर भी सुन सकते हैं, साफ वाजे और स्टूडियो क्वालिटी के। जो अहबाब फेसबुक अकाउंट रखते हैं, अगर वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाना चाहें तो मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पर तशरीफ़ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज़्म में शामिल होना चाहें, हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 30 66 77।

0: 1:03 a.m. and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1:03 a.m. and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
15: दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको मिडिल से बड़ा लेकर चलें और अपने काबिल सद एहतराम लिसनर जनाब सूफ़ी अब्दुल करीम अली साहब का तोहफ़ा उनकी नज़र करें, मैं आप सबसे मुल्तमिस हूँ, हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मेरे चचाजाद भाई बाबर अब्बासी इस वक्त कोमा में हैं और दुबई में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और डॉक्टरों का कहना यह है कि अगर इन्होंने आँख खोल ली, वेंटिलेटर पे थे पहले, अब उसे उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फजल से उन्हें सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए, और स्ट्रोक हुआ है उन्हें, स्ट्रोक होने के बाद वो इस हालत में आए हैं। दुआ कीजिए उनको, उनके दिमाग का ऑपरेशन करके वो क्लॉट जो मूव कर रहा था निकाल दिया गया है, 20% बाकी है, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ان پر کرے اور انہیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحم سے صحت کاملہ، صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ ان کی بٹیا اور داماد دبئی میں موجود ہیں جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔

एक मरतबा फिर अपने तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि दुआ के लिए हाथ उठाइए और बाबर अब्बासी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला, वो कोमा में हैं इस वक्त, हॉस्पिटलाइज हैं दुबई में, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए और उनकी साहबजादी हाला और उनके जीवन साथी अली जिस तरह से भाग दौड़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी उस भाग दौड़ को भी कबूलियत का सर्व बख्शे और उन्हें इसका अजर अता फरमाए। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर मिडिल्सब्रा, जहां हमारे मोहतरम सूफ़ी अब्दुल करीम अली साहब बहुत दिनों के बाद आए हैं। और ये भी आपको बता दूं कि मुझे इन्होंने फ़ोन करके बताया था कि इनकी तबीयत नासाज रहती है, चलने फिरने से कासिर हैं इस वक्त। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से, अपने रहम से उन्हें भी सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। सूफ़ी अब्दुल करीम अली साहब, हमारी और हमारे सुनने वालों की ढेरों दुआएं आपके साथ हैं और न जाने किसके उठे हुए हाथ शफ़ कबूलियत हासिल करें दुआओं में, क्योंकि बहुत से हमारे सामईन और नाज़रीन मुस्तजाबुल दावात हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको, बाबर अब्बासी आपको सेहत कामला और सेहत आजला अपने करम फजल से नसीब फरमाए। आप सब जानते हैं सूफ़ी अब्दुल करीम अली साहब जो हैं वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सदाई हैं और जब भी तशरीफ़ लाते हैं वो कलाम इकबाल ही सुनते हैं। और एक शेर उन्होंने पढ़ा था कि जिस खेत से दहकां को मैसर ना हो रोटी, जिस खेत से दहकां को मैसर ना हो रोटी, उस खेत के हर खोशए गंदुम को जला दो। आपका तोहफ़ा लेकर हाजिर हूँ, कबूल कीजिए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सूफ़ी अब्दुल करीम अली साहब मिडिल्सब्रा में, अहले मिडिल्सब्रा को भी मेरा सलाम पहुँचे।

मैं अपनी प्यारी सी बहना शहनाज का नाम लिखना भूल गया था। शहनाज हमने लिख लिया है और जो गीत आपने सुनना चाहा है वो भी आपकी नज़र करेंगे, लेकिन अभी हमें जाना है एक मरतबा दोबारा मिडिल्सब्रा, क्योंकि हमारी बावची खाने की रानी और प्यारी सी बिटिया सुमेरा ब्रैडफोर्ड 3 से हमारी बज़्म में शामिल हैं और कहती हैं कि हम अपनी प्यारी प्यारी कज़न्स के नाम ये गीत पेश करना चाहते हैं। तो फतन इसलिए कि मैं अभी गई थी बकरीद पर वहाँ, तो वहाँ पता चला कि उनको ये गीत बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला सुमेरा बिटिया आपकी और आपकी कज़न्स की ये मोहब्बत और प्यार का रिश्ता यूं ही कायम और दायम रखे और इसे किसी की नज़र ना लगे।

आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में से इस वक्त ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस बज़्म में तशरीफ़ लाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुश आमदीद कहेंगे। तो आइए चलते हैं, मिडिल्स बराबर पेश करते हैं अपनी प्यारी सी बिटिया सुमैरा ब्रैडफोर्ड 3 से आपका तोहफा आपकी कजन्स के नाम।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में, दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज हमारी मौजूद मेहमान का ताल्लुक कराची से है, अदबी माहौल में परवरिश हुई। बुजुर्ग और मकबूल और हर दिल अजीज शायर सहर अंसारी की साहबजादी हैं और जामिया कराची से वाबस्ता हैं, दर्स व तदरीस का सिलसिला इख्तियार किया है। आप हैं डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर और आज वो हमारी मेहमान हैं। जदीद व कदीम का हसीन इम्तिजाज इनके अशआर में मिलता है और अशआर इस कदर दिलरुबा दिलनशी होते हैं कि दिल में उतर जाते हैं। सादगी का नमूना और जदीद और कदीम का हसीन इम्तिजाज इनके अशआर को बे इंतहा हसीन बना देता है। दुनिया के चार कोनों में अपने फ़न का मुजाहरा कर चुकी हैं और लाखों दिलों को अपने अशआर से मसूर कर चुकी हैं। तशरीफ़ लाती हैं हमारी आज की मेहमान, जिन्हें हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर।
10: जो भी रखो सोच लेना, ताल्लुक जो भी रखो सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते
11: हैं।
10: चलो चलो, मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन तुम्हें तो याद आना चाहिए था।
11: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने अमरीन साहिबा। यूसुफ़े वक्त को
10: बेमोल लिए जाते हैं, अब के बाजार में क्या कोई खरीदार नहीं।
11: क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वा। आपकी जोरदार तालियों के साथ आवाज देना चाहता हूं, अमरीन हसीब अंबर आए और इस पूरे मुशायरे की फिजा को संजीदा करें। अमरीन,
10: बहुत शुक्रिया लोक साहब, बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं। आदत कम होने का सबब आज हमें मालूम हो गया है और वो सबब यह है कि कार्ड पे लिखा जाता है कि 10 साल से कम उम्र नजर ओझल से।
11: वाह,
10: तुम छाए थे बादल से, हो गए मंजर ओझल से, बात बदल दी है तुमने, डर गए बहते काजल से। बात बदल दी है तुमने, डर गए बहते काजल से, तुम्हारे साथ गई जो खुशी नहीं आई, तुम्हारे साथ गई जो खुशी नहीं आई, फिर उसके बाद लबों पर हंसी नहीं आई, फिर उसके बाद लबों पर हंसी नहीं आई, बिछड़ते वक्त बहुत जाम था उसे खुद पर, बिछड़ते वक्त बहुत जाम था उसे खुद पर, मेरी भी आंख में बिल्कुल नमी नहीं आई।
11: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
10: बिछड़ते वक्त बहुत जाम था उसे खुद पर, मेरी भी आंख में बिल्कुल नमी नहीं आई, कदम जो भी उठाना चाहिए था नया रास्ता बनाना चाहिए था, कदम जो भी उठाना चाहिए था नया रास्ता बनाना चाहिए था, तमन्ना थी नई बातों की तुमको, तमन्ना थी नई बातों की तुमको, मुझे लहजा पुराना चाहिए था, तमन्ना थी नई बातों की तुमको, मुझे लहजा पुराना चाहिए था, चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन,
11: चलो
10: मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन, तुम्हें तो याद आना चाहिए था।
11: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने अमरीन साहिबा।
10: चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन,
11: क्या बात,
10: तुम्हें तो याद आना चाहिए था।
11: याद आना चाहिए था।
10: आदाब, अपनी बहनों की तरफ से ख्वातीन के हवाले से चंद अशार और के, मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में,
11: क्या कहने,
10: मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में, मैं मोहब्बत की अलामत मैं वफा की तस्वीर, मैं मोहब्बत की अलामत मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में।
11: वाह वाह वाह।

0: हम के दरबारों में मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में।
1: वाह वाह वाह।

0: हम के दरबारों में मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हूँ तुम हो एक दुनिया है, तौबा है, सारा आलम देख रहा है, तौबा है, सारा आलम देख रहा है, तौबा है, सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा, सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा, और यहाँ जो दिल धड़का है,
1: तौबा है,
0: तौबा है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा, और यहाँ जो दिल धड़का है,
1: तौबा है,
0: तौबा है। मैंने तुमसे दिल में ढेरों बातें की, मैंने तुमसे दिल में ढेरों बातें की, तुमको खामोशी का गिला है, तौबा है, तुमको खामोशी का गिला है, तौबा है। और तुमने पुकारा नाम किसी का महफिल में, तुमने पुकारा नाम किसी का महफिल में, मैंने अपना नाम सुना है,
1: तौबा है,
0: तौबा है। तुमने पुकारा नाम किसी का महफिल में, मैंने अपना नाम सुना है, तौबा है। और आखिरी शेर है कि तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मैंने जो समझा है,
1: तौबा है,
0: तौबा है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मैंने जो समझा है,
1: तौबा है,
0: तौबा है। और उबैद ताहिर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने फरमाइश की थी तो उस गज़ल के चंद अशआर के, ध्यान में आकर बैठ गए हो
1: तुम भी ना,
0: तुम भी ना,
1: क्या बात है। वाह वाह वाह, तरन्नुम नहीं,
0: ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो
1: तुम भी ना,
0: तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए,
1: क्या कहने,
0: दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो
1: तुम भी ना,
0: तुम भी ना, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना। और शेर समाज की जगह के इश्क ने यूं दोनों को हम आमेस किया,
1: क्या
0: इश्क
1: अच्छा
0: ने यूं दोनों को हम आमेस किया, अब तो तुम भी कह देते हो
1: तुम
0: भी ना।
1: ये है, वाह वाह वाह।
0: इश्क ने यूं दोनों को हम आमेस किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, मेरी बंद आँखें भी तुम पढ़ लेते हो,
1: क्या कहने हैं,
0: मेरी बंद आँखें भी तुम पढ़ लेते हो, मुझको इतना जान चुके हो
1: तुम भी ना,
0: तुम भी ना, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना,
1: वाह।
0: कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो
1: तुम भी ना,
0: तुम भी ना। और आखिरी शेर है कि माँ

0: से किस तरह बसर होती है भला, जो बात छुपी है दिल में तेरे, जो बात छुपाई है दिल में वो बात कभी हमको भी बता, जो बात छुपाई है दिल में वो बात कभी हमको भी बता, परदेश को जाने वाले बता, होता है वहाँ भी दिन रोशन क्या रात सुहानी होती है,
1: वाह,
0: होता है वहाँ भी दिन रोशन क्या रात सुहानी होती है, चंदा मामा की बुढ़िया क्या वहाँ चरखा काता करती है, चंदा मामा की बुढ़िया क्या वहाँ चरखा काता करती है, होती है मोहब्बत की रिमझिम या धूप बरसती रहती है,
1: क्या कहने
0: परदेश को जाने वाले बता,
1: वाह वाह वाह,
0: होती है वहाँ होती है मोहब्बत की रिमझिम या धूप बरसती रहती है, परदेश को जाने वाले बता, होती है तबीयत जब बोझल तो कौन मसीहा बनता है,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: होती है तबीयत जब बोझल तो कौन मसीहा बनता है, माथे पर पानी की पट्टी क्या कोई जाग के रखता है,
1: आ हा हा हा हा, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह वाह वाह,
0: होती है तबीयत जब बोझल तो कौन मसीहा बनता है, माथे पर पानी की पट्टी क्या कोई जाग के रखता है, क्या पैर दबाता है कोई, क्या पैर दबाता है कोई, क्या नखरे कोई सहता है, परदेश को जाने वाले बता, आती है ईद दिवाली तो किस तरह मनाई जाती है,
1: वाह वाह,
0: आती है ईद दिवाली तो किस तरह मनाई जाती है, सर पर रखता है हाथ कोई घर घर से मिठाई आती है,
1: वाह वाह,
0: आती है ईद दिवाली तो किस तरह मनाई जाती है, सर पर रखता है हाथ कोई घर घर से मिठाई आती है, क्या इंटरनेट पे बातों से हर प्यास बुझाई जाती है,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: क्या इन
1: परदेश को जाने वाले बता, वाह वाह वाह वाह,
0: क्या इंटरनेट पे बातों से हर प्यास बुझाई जाती है, परदेश को जाने वाले बता, घर देश में बनवाया है मगर किस्मत में तेरे दर बदरी है, घर देश में बनवाया है मगर किस्मत में तेरे दर बदरी है, बहनों की शादी करने में बालों में सफेदी उतरी है,
1: हा हा हा हा, परदेश को जाने वाले बता,
0: घर देश में बनवाया है मगर किस्मत में तेरे दर बदरी है, बहनों की शादी करने में बालों में सफेदी उतरी है, बुझते अरमां जलती रंगत, बुझते अरमां जलती रंगत, क्या तेरी बस ये पूंजी है, परदेश को जाने वाले बता, संगे मरमर के जंगल में क्या अपनी मट्टी याद नहीं, संगे मरमर के जंगल में क्या अपनी मट्टी याद नहीं, कच्चा आंगन महकी बारिश कागज की कश्ती याद नहीं,
1: हा हा हा,
0: संगे मरमर के जंगल में क्या अपनी मट्टी याद नहीं, कच्चा आंगन महकी बारिश कागज की कश्ती याद नहीं, 100 बार गिरे थे हम जिस पर क्या वो पगडंडी याद नहीं, 100 बार गिरे थे हम जिस पर क्या वो पगडंडी याद नहीं, परदेश को जाने वाले बता, और आखिरी बंद है कि माँ की रोटी से बढ़कर भी खाया है कोई खाना तो बता, माँ की रोटी से बढ़कर भी खाया है कोई खाना तो बता, उसके आंचल से बढ़कर भी पाया हो कहीं साया तो बता,
1: वाह,
0: उसके आंचल से बढ़कर भी पाया हो कहीं साया तो बता, वो आंखें बंद न हो जाएं, वो आंखें बंद न हो जाएं, वापस है तुझे आना तो बता, परदेश को जाने वाले बता, परदेश को जाने वाले बता,
1: वाह वाह वाह।
2: और दोस्तों अभी

0: आप सुन रहे थे वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और आज हमारी मेहमान थी डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर, जिनका ताल्लुक कराची से है और पेशा दरस व तदरीस है। मुझे यकीन है कि हमारे सुनने वालों को ये बेइंतहा पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खुश आमदीद कहना चाहेंगे, परदेसी मजीद साहब तशरीफ़ लाए हैं और आप हमारे हमराह मौजूद हैं खारियाँ गुजरात पाकिस्तान से। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपका चचा जान। मेरी जानिब से आपके तमाम सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे भी ढेरों दुआओं से नवाजा है। और गीत जो आपने बताया है वो मैंने क्यू कर लिया है, और इंशाल्लाह क्योंकि वक्त कमर्शियल का करीब आ रहा है, कमर्शियल के वक्फे के बाद मजीद परदेसी साहब आपका तोहफा हम आपके नाम करेंगे। आपकी ये मोहब्बत है और चाहत है। कल हमें आपका पैगाम मिल नहीं पाया सो हमने ज़िक्र नहीं किया। मैंने कहा न जाने किस वजह से शायद मसरूफ़ हो गए होंगे, लेकिन आज आपका पैगाम हमें मिल गया है। हमने वो गीत भी लगा रखा है जो हम कमर्शियल के वक्फे के बाद पेश करेंगे। दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। हमारी ये नशियात 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की हसीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुनी जा रही हैं। साथ ही साथ हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें भी दिल की तमाम तर गहराइयों से गज़ल उसने छेड़ी में शामिल करेंगे। और शामिल होने के लिए हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। सो मुलाकात होती है कमर्शियल के वक्फे के बाद, जब हम आपको खारियाँ गुजरात पाकिस्तान लिए चलेंगे और परदेसी मजीद आपका तोहफा आपकी नजर करेंगे।
1: AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
5: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

हम चल रहे हैं अपनी बहुत प्यारी सी बहना जो ढेर दुआओं के साथ हमारी बज में शामिल हुई हैं शहनाज ब्रेडफोर्ड 18 में, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और सेहत से रखे, अपने जवान में रखे, नजर बद से बचाए और तुम अपने बच्चों की बहारें देखो। तो चलते हैं ब्रेडफोर्ड 18, शहनाज प्यारी बहना, आपका तोहफा आपकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम, बचपन की यादें ताज़ा कर दीजिए।

और दोस्तों ये पसंद थी हमारी प्यारी सी बहना ब्रेडफोर्ड 18 से शहनाज की और आवाज़ थी अफशां अहमद की। अब हम आपको लिए चल रहे हैं बर्नले, जहां मौजूद हैं शकील भाई और उन्होंने सुनना चाहा है ये खूबसूरत गीत। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।

0: और दोस्तों, ये पसंद थी शकील साहब की। आप बंदे से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं। कमर्शियल के वक्फे के बाद हम आपको वेक फील्ड लिए चलेंगे, जहां मौजूद हैं वक़ार मियां अपने अहले खाना के साथ। और वो आज वापस आए हैं, कह रहे हैं मैडम ब्रा मुझे काम पड़ गया और मुझे रात को रुकना पड़ा, सो आज का दिन मैं घर में अपने अहले खाना के साथ गुजार रहा हूँ। हम लोग इस वक्त आपका प्रोग्राम गार्डन में बैठे हुए सुन रहे हैं, कैनेपी लगाई हुई है। और कहते हैं कि मौसम जैसा बताया था उससे मुख्तलिफ हो गया है, शदीद गर्मी है, हवा कभी कभी चलती है तो मौसम कुछ गवार हो जाता है, वरना गर्मी का एहसास शिद्दत से होता है। हम आपको दिल की तमाम गहराइयों से आपके अहले खाना समेत वक़ार मियां खुश आमदीद कहते हैं। और कमर्शियल के वक्फे के बाद हम आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर, यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन, www.bradfordasianradio.co.uk पर।
1: Music online. You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak.
9: साइट की तरफ से ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अता गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
8: मुबारक ईद मुबारक।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
8: दोस्तों, मैंने बताया था कि मैं गीत पेश करूंगा वकार मियाँ का। उनकी कॉल आ गई है और वो कह रहे थे कि 5-7 मिनट बाद हमारा गीत लगा दीजिएगा सर आँखों पर। लेकिन हम क्यों ना इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर साहब भी लंच ब्रेक पे तशरीफ़ ला चुकी हैं, डॉक्टर माहरुख साहिबा, और सुनना चाहती हैं एक खूबसूरत गीत। बल्कि ये गीत जो है बहुत ही पसंद है मुझे, ये गज़ल जो डॉक्टर साहब ने मुंतखब की है, लेकिन खाली हाथ नहीं आई हैं डॉक्टर साहब। सदा अम्बालवी का ये कलाम आपके लिए लाई हैं। कहती हैं कि मेरी जानिब से अदब के शायकीन और शेर के मतवालों के नाम कर दीजिए कि अब कहाँ दोस्त मिलें साथ निभाने वाले, अब कहाँ दोस्त मिलें साथ निभाने वाले, सबने सीखे हैं अब आदाब जमाने वाले, अब कहाँ दोस्त मिले साथ निभाने वाले, सबने सीखे हैं अब आदाब जमाने वाले, दिल जलाओ या दिए आँखों के दरवाजे पर, वक्त से पहले तो आते नहीं आने वाले, दिल जलाओ या दिए आँखों के दरवाजे पर, वक्त से पहले तो आते नहीं आने वाले, अश्क बन के मैं निगाहों में तेरी आऊँगा, अश्क बन के मैं निगाहों में तेरी आऊँगा, ऐ मुझे अपनी निगाहों से गिराने वाले, अश्क बन के मैं निगाहों में तेरी आऊँगा, ऐ मुझे अपनी निगाहों से गिराने वाले, और वक्त बदला तो उठाते हैं अब उंगली मुझ पर, वक्त बदला, हासिल गज़ल शेर है डॉक्टर साहब ये, वक्त बदला तो उठाते हैं सब उंगली मुझ पर, कल तलक हक में मेरे हाथ उठाने वाले। वाह वाह वाह वाह, बे इंतहा खूबसूरत, बे इंतहा खूबसूरत। वक्त बदला तो उठाते हैं अब उंगली मुझ पर, कल तलक हक में मेरे हाथ उठाने वाले, ये सियासत है कि लानत है सियासत की सदा, ये सियासत है कि लानत है सियासत की सदा, खुद हैं मुजरिम बने कानून बनाने वाले, ये सियासत है कि लानत है सियासत के सदा, खुद ही मुजरिम बने कानून बनाने वाले, अब कहाँ दोस्त मिलें साथ निभाने वाले, सबने सीखे हैं अब आदाब जमाने वाले। और डॉक्टर साहब, आपकी पसंद लेकर हाजिर हूँ, आपकी आमद का हमेशा की तरह बेइंतहा शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारी हिम्मत अफजाई के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाती हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और नज़र बद से बचाए। आपका तोहफ़ा लेकर हाजिर हूँ।

हसीन है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

और दोस्तों अब हम चल रहे हैं आपको लेकर लैया पंजाब पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम लिसनर जनाबे नज़ीर अहमद साहब। और ये तोहफ़ा हम उनकी उन मोहब्बतों चाहतों के नाम कर रहे हैं जिससे वो बाकायदगी से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाते हैं। नज़ीर अहमद, जीते रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे और आपकी ये मोहब्बत यूं ही कायम और दायम रहे। तोहफ़ा हाजिर है, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा।

0: 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: To Rab Haider Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
13: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडिया,
7: यू आर लिसनिंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो,
8: द हिंदी उर्दू म्यूजिक शो ऑन ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
8: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 495555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is... Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
7: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se dili Eid Mubarak.
6: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिस्निंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: इश्क गर है जुर्म तो कोई सजा बाकी न हो, इश्क गर है जुर्म तो कोई सजा बाकी न हो, हाँ मगर पत्थर वही मारेगा जो पापी न हो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627222, 9627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki atagrahiyon se dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: जिसको चाहा था न पाया, जो न चाहा था मिला। जिसको चाहा था न पाया, जो न चाहा था मिला। सोचता हूँ जिंदगी में खोया क्या और क्या मिला।

हर गम टपक रहा है मेरे आंसुओं में ढलकर, हर गम टपक रहा है मेरे आंसुओं में ढलकर।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014।
9: सोफी ज्वेलर्स।
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
14: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
15: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
14: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
15: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
16: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ataa garaiyon se dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनिंग।
3: दिस इज ब्रॉडफिट एशियन रेडियो 1413 AM एंड ऑनलाइन।

तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ़ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ़ तुमसे प्यार करते हैं। फिल्म दीवाना से लिया गया गीत, उम्मीद करते हैं ये गीत आपको पसंद आया होगा। आने वाला गीत चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम करेंगे, आपकी तरफ से तारिक जुल्फी महमूद सुल्तान कराची वाले और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के नाम ये गीत होगा।

जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने समाप्त फरमाया सामीन, फिल्म बेताब से लिया गया गीत। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा।

अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाइयों पर मुस्कराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाइयों पर मुस्कराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। जहम जब भी कोई जहन में दिल पर लगा, जहम जब भी कोई जहन और दिल पर लगा, ज़िंदगी की तरफ एक दरिया खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, हम भी गोया किसी साज के तार हैं। चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाइयों पर मुस्कराते रहे, मेरी तन्हाइयों पर मुस्कराते रहे।

0: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स, आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
9: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
10: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
10: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

चाहा तो बहुत ना चाहें तुम्हें, चाहा तो बहुत ना चाहें तुम्हें, चाहत पे मगर कोई ज़ोर तो नहीं, चाहत पे मगर कोई ज़ोर तो नहीं। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने समाज फरमाया कमार सानू और बेला की आवाज़ में। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। इज़्नान चौधरी मुजफ्फर साहब शाम हुए कॉल किया आपने, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आपने भी कहा कि मेरी तरफ से भी गुज़श्ता ईद मुबारक सब सामईन को और हज की भी मुबारक। जी आपकी तरफ से भी सब सामईन को होगी जी, और ईद मुबारक और हज मुबारक, क्योंकि मेरा ईद के बाद पहला प्रोग्राम है तो सारी सारी मुबारकें फिर ऐसे ही शामिल होनी है। तो सभी को, सभी सामईन को जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब की तरफ से भी ईद की बहुत बहुत मुबारक, और हज की भी जिनके लोग हज पर गए हैं उनको, हाजियों को भी हाजी की बहुत बहुत मुबारकबाद पे कबूल हो।

जी आने वाला जो गीत होगा चौधरी मुजफ्फर साहब आपकी तरफ से, आपके जितने भी दोस्त हैं जिनमें तारिक जुल्फी हैं, महमूद सुल्तान कराची वाले हैं और जितने भी दोस्त हैं लिस्ट आपकी शामिल करते हैं, उन सभी के नाम ये आने वाला गीत होगा। अभी ये गीत ये भी आपके नाम भी करते हैं। साथ साथ आपकी ये होती है कि आप अशार भी सुनना कहते हैं, साथ साथ पढ़ा करें। अभी तो मुझे आदत हो गई अशार साथ शामिल करने की, आपकी फरमाइश होती थी, अब मेरी आदत हो गई है तो अशार भी साथ शामिल करते हैं। और ये भी अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कराते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कराते रहे। और हम भी उसे आजमाते रहे। सहत हालात के तेज तूफान में, सहत हालात के तेज तूफान में गर गया था हमारा जुनून वफा, सहत हालात के तेज तूफान में गर गया था हमारा जुनून वफा। हम चरागे तमन्ना जलाते रहे, वो चरागे तमन्ना बुझाते रहे। हम चरागे तमन्ना जलाते रहे, वो चरागे तमन्ना बुझाते रहे। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत देर थक गया, कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां, कितनी यादों के भटके हुए कारवां, दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे, दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाइयों पर मुस्कराते रहे, मेरी तन्हाइयों पर मुस्कराते रहे।

हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने समाप्त फरमाया चौधरी मुजफ्फर साहब। उम्मीद करते हैं आपको भी ये गीत पसंद आया होगा। जी हाँ, जर्मन में भी सुना जा रहा है प्रोग्राम, वहाँ भी शायरा हैं फौजिया गजनफर, उन्होंने भी चंद अशआर सेंड किए हैं, उनके नाम भी हम आने वाला गीत करेंगे और ये अशआर भी पढ़ते हैं, शामिल करते हैं। आंखों में हमारी ख्वाब पाने के सफ़र सजे हैं, आंखों में हमारी ख्वाब पाने के सफ़र सजे हैं, भागते कदमों तले कई सालों के रथ जगे बंधे हैं, भागते कदमों तले कई सालों के रथ जगे बंधे हैं, ख्वाहिशों के नगर जा बजा संग बिछे हैं, ख्वाहिशों के नगर जा बजा संग बिछे हैं, हमारी मसाफत की थकन में मत उलझो, हमारी मसाफत की थकन में मत उलझो, मंजिल पाने के वास्ते हर मुश्किल से लड़े हैं, मंजिल पाने के वास्ते हर मुश्किल से लड़े हैं, आंखों में हमारी ख्वाब पाने के सफ़र सजे हैं, भागते कदमों तले कई सालों के रथ जगे हैं, भागते कदमों के कई सालों के रथ जगे हैं।

0: सामिन बहुत खूबसूरत गीत आप समाप्त कर रहे थे, वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक उस पार, हमारे साथ रहिएगा।
1: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak.
9: Bradford Asian Radio के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
8: मुबारक ईद मुबारक।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio,
9: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
10: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: तालियों की गूंज में उन्हें खुश आमदेद कहेंगे। बाईसवीं साहब को जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: कैसे हैं भाई शकील साहब, कैसे रही ईद और क्या कैसे हैं आप?
1: कैसे हैं महबूब भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का, जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है।
1: तो सुनने वालों को मैं फिर से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम साहब की तरफ से।
1: ईद मुबारक गुजर गई जो
0: जी।
1: अगर खालस लीमीद सुन रहे हो तो हमारे अली भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब, जहांगीर भाई हैं, आसिफ रियासत है, नवीद भाई, तारिक भट्ट अगर सुन रहे हो तो इकबाल भाई, तारिक जुल्फी जो भी सुन रहे हैं सबको मैं अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम सलाम साहब की तरफ से।
1: एक छोटी सी गजल है
0: जी,
1: मियां अमर इनका नाम है लिखने वाला
0: जी, अरशाद।
1: कहते हैं तुझसे नजर मिलाने का हौसला नहीं होता।
0: हाय हाय, तुझसे नजर मिलाने का हौसला नहीं होता। वाह,
1: कुछ सुनने और सुनाने का हौसला नहीं होता।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: तुझसे नजर मिलाने का हौसला नहीं होता, कुछ सुनने और सुनाने का हौसला नहीं होता।
0: नहीं होता।
1: जनूने इश्क में कुछ ऐसे हुए रुसवा, अब दहर में सर उठाने का हौसला नहीं होता।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: दिल ही दिल में दबा रखी है आरजुए दोस्ती।
0: दिल ही दिल में दबा रखी है आरजुए दोस्ती। वाह,
1: दिल ही दिल में दबा रखी है आरजुए दोस्ती, ये बात जबान पे लाने का हौसला नहीं होता।
0: हाय हाय हाय, ये बात जबान पर लाने का हौसला नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: हम इतने बुरे नहीं हैं, हमसे ना हो बदगुमा।
0: वाह वाह,
1: तुझे सब कुछ बताने का हौसला नहीं होता।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: उधर तू खफा है, इधर अपनी अना है दोस्त। उधर तू खफा है, इधर अपनी अना है दोस्त, क्या करूं तुझे मनाने का हौसला नहीं होता।
0: क्या करूं तुझे मनाने का हौसला नहीं होता। वाह वाह, बहुत खूब।
1: मेरी तमाम कोशिशें हो गई हैं रायगां। मेरी तमाम कोशिशें हो गई हैं रायगां, दिल से तुझे भुलाने का हौसला नहीं हुआ।
0: हाय हाय हाय, दिल से तुझे भुलाने का हौसला नहीं हुआ। वाह वाह, बहुत खूब।
1: काफी शेर है अभी भाई
0: जी। जी इरशाद।
1: जब कभी अपने गिरेबां में झांक लूं अमर। जब कभी अपने गिरेबां में झांक लूं अमर, किसी पे उंगली उठाने का हौसला नहीं होता।
0: हा हा हा, बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब।
1: शुक्रिया। तो एक छोटी गजल है नुसरत मसूद लिखने वाले।
0: नुसरत मसूद जी, अरशाद।
1: कहते हैं वो इस अंदाज की मुझसे मोहब्बत चाहता है। वो इस अंदाज की मुझसे मोहब्बत चाहता है, मेरे हर ख्वाब पर अपनी हुकूमत चाहता है।
0: मेरे हर ख्वाब पर अपनी हुकूमत चाहता है। वाह जी वाह, बहुत खूब।
1: मेरे हर लफ्ज में जो बोलता है मुझसे बढ़कर। मेरे हर लफ्ज में जो बोलता है मुझसे बढ़कर, मेरे हर लफ्ज की मुझसे वजाहत चाहता है।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: बहाना चाहिए उसको भी अब तरके वफा का। बहाना चाहिए उसको भी अब तरके वफा का, मैं खुद करूं उससे कोई शिकायत चाहता है।
0: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह, बहुत खूब।
1: उसे मालूम है मेरे पांव में दम नहीं है। उसे मालूम है मेरे पांव में दम नहीं है, मेरा सयाद अब मुझसे बगावत चाहता है।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: वो कहता है कि मैं उसकी जरूरत बन चुकी हूँ। तो गोया वो मुझसे हसबे जरूरत चाहता है।
0: तो गोया वो मुझे हसबे जरूरत चाहता है। वाह वाह।
1: कभी इसके सवालों से मुझे लिखा है ऐसे, कभी उस के सिवा कौन, कभी उसके सिवा कौन से मुझे लगता है ऐसे।
0: जी जी,
1: सॉरी सॉरी। कभी उसके सवालों से मुझे लगता है ऐसे,
0: कभी उसके सवालों से मुझे लगता है ऐसे,
1: کہ جیسے وہ خدا ہے اور قیامت چاہتا.
0: ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: کبھی اس کے سوالوں سے مجھے لگتا ہے ایسے جیسے وہ خدا ہے اور قیامت چاہتا.
0: واہ واہ بہت خوب.
1: آخری شعر نصرت مسعود کہتی ہیں,
0: جی,
1: اسے معلوم ہے میں نے ہمیشہ سچ لکھا ہے.
0: ہائے ہائے, اسے معلوم ہے میں نے ہمیشہ سچ لکھا ہے,
1: وہ پھر بھی جھوٹ کی مجھ سے حمایت چاہتا ہے.
0: پھر بھی جھوٹ کی مجھ سے حمایت چاہتا. واہ واہ واہ واہ بہت خوب.
1: یہ تھے نصرت مسعود.
0: واہ جی واہ, بڑی مہربانی بشکیل صاحب تشریف لانے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مسکراتا رکھے ہمیشہ. تالیوں کی گونج میں آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں. اپنا بہت سا پیار رکھیے گا. جناب یہ تھے بشکیل صاحب, بلے سے تشریف لاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مہمان خصوصی ہم انہیں کہتے ہیں. ہماری محفل کے جس بھی ریڈیو پر ہم نے کام کیا یہ ہمارے ساتھ رہے ہر ریڈیو پر, تو ہمارے دل میں بہت پیار ہے اور عزت ہے. اور ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں ہمارے. اور آپ کو پتہ ہے شاعری ایک زبردست لے کے آتے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک شاعری ہوتی ہے ان کے پاس, تو ہر ریڈیو پر سنائی دیتے ہیں, لیکن ہمارے ریڈیو پر بھی ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہت لطف آتا ہے ان سے بات کر کے, ان کی شاعری سن کے. ابھی دیکھتے ہیں پھر کہاں سے.

जनाब अब तो ईद पर ईद हो गई, भाई तारिक जुल्फी साहब का भी फ़ोन था, अभी बाइशकील साहब वो भी आपकी तारीफ ही कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से भी कोई प्यारा सा गीत बाइशकील के नाम भी, चौधरी मुजफ्फर साहब के नाम और पूरी टीम के नाम। जी हाँ भाई तारिक जुल्फी साहब, आपकी तरफ से सब सामाइन को हज की भी मुबारक और ईद की भी मुबारक। गुज़श्ता जो गुज़र चुकी है सब की, आपकी तरफ से सब सामाइन को भी मुबारक कह दी हमने। और आने वाला गीत हमने शोर का मार्ग कहा है, जीते आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, बहुत ही खूबसूरत किशोर कुमार का गीत है, फरमाइश आई थी। वो हमने क्यों कर रखा है, वही नाम करते हैं आपके नाम और सभी सामईन के नाम। और आइए समात फरमाइए और उसके बाद आपकी लिस्ट शामिल करेंगे। कहीं अजान का टाइम तो नहीं होने वाला? जी जी नहीं, अभी गीत सुनते हैं।

जी हाँ भाई तारकदुरी साहब, आपके दोस्तों के नाम करना चाहेंगे जिनमें शामिल हैं सईद मुलाजम हुसैन आरफ आसी, बिलाल सुखी, मलक अजीज़ टैक्सी ड्राइवर, सुल्तान महमूद कराची वाले, परवेज BD5, महबूब BD5, ये हम हैं जनाब, और आसफ रियासत, मोहम्मद मुजफ्फर, चौधरी मुजफ्फर हैं, तारक भट्ट, ड्यूसबरी मोहम्मद जहांगीर ड्यूसबरी, बाबा जानी मोहम्मद इब्राहिम और शौकत महमूद, पापा शफीक, पापा शरफुद्दीन, यासिन भट्टी, यासर महमूद, मोहम्मद ज़ुबैर, भाई सफ़ीउल्लाह और चौधरी शबीर केतले वाले और जुवेद मीर जी। इन सभी के नाम आने वाला गीत हम करेंगे। जब भी याद याद है शब वसल अशक बहाना तेरा, अब भी याद है शब वसल अशक बहाना तेरा, लड़ते होंठों से रुदा देह जर सुनाना तेरा। अब भी याद है शब वसल अशक बहाना तेरा, लरजते होंठों से रुदा दे हिजर सुनाना तेरा। बातों बातों में इजहार मोहब्बत करके, बातों बातों में इजहार मोहब्बत करके, वो शर्म से मुंह हथेलियों में छुपाना तेरा। बातों बातों में इजहार मोहब्बत करके, वो शर्म से मुंह हथेलियों में छुपाना तेरा। किन आँखों से मतवातर मुझे देखते रहना, किन आँखों से मतवातर मुझे देखते रहना, मेरे देखे पे वो नजरें गंवा देना तेरा, मेरे देखने पे वो नजरें गमा देना तेरा। अचानक मेरी आमद की खबर पाकर, घर की चौखट पे भाग कर वो आना तेरा। अब भी याद है शब वसल अश्क बहाना तेरा, लरजते होंठों से रुदा दे हिजर सुनाना तेरा।

0: जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। बहुत ही खूबसूरत गीत अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज किया गया, फिल्म शक्ति से लिया गया जनाब। और ये और वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक उस पर, हमारे साथ रहिएगा।
1: And online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly. Like

0: sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
2: बालियां अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काकी की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
2: आपकी शान
1: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274-491-442,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
3: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
2: सोफी ज्वेलर्स?
3: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
2: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
5: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: मैनिंगम सुपर स्टोर,
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

आखिर तुम्हें आना है ज़रा देर लगेगी, आखिर तुमने आना है ज़रा देर लगेगी। बहुत ही खूबसूरत गीत सपना मुखर्जी और उदित नारायण की आवाज़ में आपने समाज फरमाया। चौधरी मुजफ्फर साहब, उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। जी हाँ, आने वाला गीत अजीम मुसाफिर साहब आपके नाम करेंगे, आपकी तरफ से भाई मकसूद, भाई मंसूर और भाई शान और जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं सभी के नाम ये गीत होगा।

तू ए दिल रबा मुझ पे मेहरबान हो जाए, तू ए दिल रबा मुझ पे मेहरबान हो जाए, ज़िंदगी एक हसीन दास्तान हो जाए, ज़िंदगी एक हसीन दास्तान हो जाए। कौन आरजू करे फिर महलों की जानब, कौन आरजू करे फिर महलों की जानब, दिल तेरा अगर मेरा आशियां हो जाए। कौन आरजू करे फिर महलों की जानब, दिल तेरा अगर मेरा आशियां हो जाए। नाम हो जाए मेरे जो तेरे शामो सहर, नाम हो जाए मेरे जो तेरे शामो सहर, जन्नत का यहीं पे समा हो जाए, जन्नत का यहीं पे समा हो जाए। तू ए दिल रुबा मुझ पे मेहरबान हो जाए, तू ए दिल रुबा जो मुझ पे मेहरबान हो जाए, ज़िंदगी एक हसीन दास्तां हो जाए, ज़िंदगी एक हसीन दास्तां हो जाए।

तेरा साथ है इतना प्यारा, फिरोज खान की बहुत प्यारी फिल्म थी और बहुत ही प्यारा गीत। इस दौरान जनाब हमारे साथ थे भाई रुखसार फ़ोन पर, और फिल्म का नाम लगता है मुझे भी अब याद नहीं क्या था, कुर्बानी नहीं थी या फिरोज खान की एक और, जानबाज, जी जानबाज फिल्म से लिया गया। देखिए याददाश्त अभी भी है गीतों के बारे में, तो ये जानबाज से गीत लिया गया। उम्मीद करते हैं गीत भी आपको पसंद आया होगा। और जनाब अभी जो गीत होगा ये प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा आज का, क्योंकि बाकी टाइम प्रोग्राम ख़त्म होने में 4 मिनट बाकी रह गए हैं।

जी हाँ, बहुत खूबसूरत गीत चौधरी रुखसार साहब आपके नाम करते हैं और आपकी तरफ से सब सामीन के नाम, और इसके साथ ही सामीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी बात पर इत्तफाक करते हुए कि इस दुनिया का नाइत में सबसे हसीन चांद है और उसमें भी दाग है, मुकम्मल सिर्फ हमारे रब के और उसके महबूब की ज़ात है। इंसान खताकार है, उन्हीं में से हम भी एक हैं। दुरानी प्रोग्राम हमसे भी कोई गलती कताही होगी हो तो उम्मीद करते हैं आप अपना समझिए हमें माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे इस जहाँ में भी और अगले जहाँ में भी। इस दुआ के साथ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलते रहें और मुस्कराते रहें। अपने प्रेजेंटर, अपने दोस्त, अपने भाई महबूब इलाही को दीजिए इजाज़त हमारी तरफ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हम सब का अल्लाह निगहबान।

0: 3 a.m. and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak.
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक
8: मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
12: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
13: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
12: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
13: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
12: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू

0: बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
1: बालियां अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627222 9627222।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
8: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Melbourne. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD9 5VR, 01274 491 44।

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
1: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
9: Turab Hadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki ata garaiyon se Dili Eid Mubarak.
8: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
10: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और
3: फ्री मैचिंग। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 81/83 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.